0: मैंने बैग देख चुका हूं।
1: अम्मा
0: नी निम्मे बॉम्बे अधोलोक राजावाणी या

0: दी लगा वो तेल
1: आई है मेरा दोस्त
0: कहीं न मरो कहीं न मरो
1: चुप रह साले
0: मेले उन्हें ना सुबह मर मर देगा
1: लुका पट्टा चलो लगाओ
0: बैंडा बैंडा न्याना बैंडा बैंडा कामर्दी याले नहीं तो हिरकी नहीं डले

0: साला नायकता
1: अम्मा
0: पिकर मत करो बेटी अवन कार्य मनसाई
1: रामोटे नेला वन्दन चाहिए तो
0: आदो एंड वन नहीं अलग ने नेला मन तलाई
1: अलग अम्मा बो आनो
0: इन्नो पोरपटलिंगे आग प्रश्न आमोले ट्रेन में समय आई अबरे इन्हीं इपने शिवसेना कारों ने केस ने वादा इन्नो तोड़ेगा जाना तो मारने हुई अवन पेटी निगल आरे वन्दन मशमी करना एंड लान्या शिरिया करूंड
2: दामोदरा निकलो अबरे हाँ अधोलोग दामोदरा निन्ने